सखी इच्छे करी। सतगुरु बड़ा प्यार ना समझाते तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास जी महाराज जिन्हों बारे वचन तुसी पढ़ते हो, धरन गगन नवखंड में भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाणे आवे, कन हर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत ना आवे, राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। वेखो किन्निया ना गिणिया जाण वालियां वस्तुआं दा जिक्र कर रहे ने भट्ट साहब, जिहड़े बदल ने उन्हां चों बूंदां गिरदियां, कोई साइंस वाले आ जाण गिण लैण, कन हर बूंद बसो रुमावल। जदों बसंत दा महीने च फुल खिड़दे आ बनस्पति च, किते वह भी भावें कोई गिण लवे, पर औखा वा ना कम। कुसम बसंत गणंत ना आवे, राव सस किरण उधर सागर को, चंद्रमा सूरज दियां किरणा कोई गिण लवे, सागर दी डूंघाई रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाण। इन्नी वड्याई बख्शी है गुरु ग्रंथ साहब जी विच गुरु अमरदास महाराज। ते वो बचन की कर रहे ने, बड़े प्यार नाल सानू समझा रहे ने, गुरमुख सखियां सखियां क्या साड़ियां सुरतियां नू, सुन सखिए मिल उद्दम करे हा, मनाए लै हर कंते, मनाए लै हर कंत। सारे सुरतियां उद्दम करो, तरले जोदड़ियां मिन्तां करो, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। किंतु इन्ना उद्दम करो, मनाए लै हर कंतै, होमे छड़ दियो, मान त्याग कर भगत ठगौरी। आ जिहड़ी कर रहे हो भगती दी ठग बूटी लाओ, इन मोह साधु मंत्र, आ साधुआं दा मंत्र वाहे गुरु कहिंदे इहदे नाल मोहिया जांदा। कहिंदे जदों फिर मोह लिया ना तुसीं, वस आया फिर छोड़ ना जाए, ये रीत भली भगवंत, कहिंदे फिर नहीं छड़दा उहदा बिरद है। अगे फिर कहिंदे सखी इश करी नित सुख मनाई। देखो किन्ने प्यार नाल समझाउंदे आ सखी साडी सुरती नूं, कहा कहिंदे इहो ही सुख सुखदी रही तूं। आपां कहिंदे ना सुखणा सुखणी आ, सुख मनाउंदी रह। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। आस की है जी, कांखी एक है दर्श तुहार। सतगुरु नूं बेनती करिए जी, ये कांखी ये आस साडी पूरी हो सकती है? कहिंदे अजी दे अगे अरदासां बेनतियां कर रहे हो ना, उन्हें करनी। इच्छा पूर्वक सर्ब सुखदाता हर, किन्ने करनी है जी? वाहिगुरु इच्छा पूर्वक सर्ब सुखदाता हर, जाके वस है काम तिन। वो नाम नू काम तिन भी गया। किते सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीड़े, तां सर्ब सुख पावे मेरे मन। किते सखी इच्छ करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। हुण जो बेनती करांगे जो मन जोड़ के तुसी कर दे हो, ते वो ना मनेगा, फिर मनेगा क्यों नहीं? कहिंदे पर तुहाडे होवे ते सही कांखी एक दर्श तुहारो। की किया उन्होंने? इच्छा पूर्वक पूरी करेगा, इच्छा पूर्वक है वो पूरी करने वाला, सारा सुख देने वाला हर, सर्व सुखदाता हर, जाके वस है
ਕਾਮ ਧਿਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁੱਖ ਉੱਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿੱਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਧਿਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹ

0: आगरा शहर की गल है। गुरु जेड़ा हुंदा है ये दीन ते दुनी दोनों की गल गुरु के हाथ में हुंदी है। दुनियावी पातशाह की गल जड़ी है जेड़े बादशाह हुंदे ने वह दुनिया ते उन्हां दा अधिकार हुंदा है। किसी नूं जगह दे सकदे ने, जमीन का टुकड़ा दे सकदे ने, धन दे सकदे ने, कोई उपाधि दे सकदे ने, पर धन जिहड़ा ये सदा नाल नहीं रहिंदा। जमीना के टुकड़े भी कईआं दे कोल होए ने, उन्हां दे कोई मालक फिर होर दे होर ही बनदे गए ने। उपाधियां ते भी कई लोग बह जांदे ने, एक पदवी ते किन्ने ही लोग बह जांदे ने, जिहड़े बैठ के निकल जांदे ने उन्हां नूं लोग भुल ही जांदे ने। पर जिहड़ा दीन ते दुनिया दुनिया तो अगली जिहड़ा गल करदा है ना उस नूं पूरा सतगुरु कहिंदे ने, जिहड़ा अगले जहान दे विच भी बांह फड़े, जिहड़ा अगे भी जिम्मेवारी लवे कि सिखा जदों ते इस संसार नूं छड के जाणा अगे मैं तैनूं खलोता मिलांगा। गज क्या को सतनाम
1: वाहिगुरु।
0: सतगुरु ने पाणी सारियां गल्लां कीतियां।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याही है जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नि दयावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत की है। अमृत वेले तो सोहने तख्ता ते प्रकाश मन होके दर्शन दीदार बख्शे हैं। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप दे सुख आसन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। आप जी दे भाणे विच दिहाड़ा सुखां नाल बतीत होया रहना आई रहना आप दे भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आम दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

अहनस सहज सुपाए दर्शन परस्य गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसम दे

करिनायाबाई कांखिये करद दर्श तुहारो नानक अनुसंग मोहि उदारो सुख मनी सुख अमर प्रभ नाम पगजना के मन विश्राम रहौ। प्रभु के सिमरन गर्व ना बस है, प्रभु के सिमरन दुख जमन सह, प्रभु के सिमरन काल पर हर है, प्रभु के सिमरन दुश्मन टराय, प्रभु सिमर कद विघन लागे, प्रभु के सिमरन अंधन जागे, प्रभु के सिमरन पौ ना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै, प्रभु के सिमरन साध के संग सिमरन धन नानक हरे रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी, प्रभु के

प्रभु जी बस सात की रसना नानक जनका दासन दसना प्रभु को सिमर से धनवंत प्रभु को सिमर से पातवंत प्रभु को सिमर से जन परवान प्रभु को सिमर से प्रभु प्रधान प्रभु को सिमर से बेमताजे प्रभु को सिमर से सर्व के राजे प्रभु को सिमर से सुखवासी प्रभु को सिमर सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिन्हें आप दयाला जन नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरा से परोपकारी प्रभु को सिमरा तन साध बाले हारी प्रभु को सिमरा से मुख सुहावै प्रभु को सिमरा तन सुख बेहावै प्रभु को सिमरा तन आत्म जीता प्रभु को सिमरा तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरा तन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरा बसे अरनेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानक सिमरन पूरे पाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कब हो न चूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सहज समानी प्रभु के सिमरन निश्चल आसन प्रभु के सिमरन कमल विगासन प्रभु के सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमर से जन जन को प्रमया नानक दिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पै सद जति जाते हर सिमरन नीच चौ कुंड जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यों सगले आकार हर सिमरन में आम निरंकार कर कृपा जिसा बुझाया नानक गुरुमुख हर

जय मात पिता सतमी तना पाई मन ऊह नाम तेरा संग सहाई जय मा प्यान धू जम दल चय केवल नाम संग तेरा चलाय जय मुस्कल होवे अत पारी हर को नाम खिन माय उदारी अनक पुन चन करत नहीं तर हर को नाम कोड़ पाप पर हर गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाप हो सुख कनेरे सगल सिष को राजा दुखी हर का नाम जब तो सुखी आला करोरी बंधन पर हर का नाम जब तने तरय अनक माय रंग तिख न बुझाव हर का नाम जब त्यागाव जय मार्ग एहो जात अकेला तेर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम सदा त्याई है नानक गुरु परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख वाही नाम जब तय पार पराही अनक बगंदाय आय

दिखाए संग जेह मार के गन जाय न कोसा हर का नाम वहां संग तोसा जय पड़े महंद गुब्बारा हर का नाम संग जयारा जहां पंतरा को न से जानो हर का नाम तय नाल पछानो जय मां प्यान तप्त बहु काम तैर के नाम के तुम ऊपर छाम जहां तिरखा मन तु दया कर नानकार अमृत बरख भगजना के वर्तन नाम संजना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस कर संदन रात हर हर औखद साध कमात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग कै नान जन कै बिरद बाबे कै हर का नाम जन को मुगत जोगत हर का नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जव का परे ना भंग हर का

प्रीपीत मन हर के नाम की महिमा उच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहु सियाणम जम का पौ व्यापै अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै

अमरण तय डराया सा जना की सरणी पराया जे जनको प्रवदर्श प्यासा नानी तंके बल बल जासा सगल पुरख मैं प्रभु प्रधान साह संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल की रीना हरा नाम तिन काट काट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन समृष्टि ता नानक पाप पुन नहीं ले पा निरतन को तन तेरो नाओ निथामे को नाम तेरा था निमाने को प्रभु तेरो मान सगल कटा को देव हो दाने करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गत में जानो आपे अपन संगा प्रभु राते तुमरे युत तुम ते होए नानक न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया स्वा संग धर्मत्मल हिरिया सगल उद्यम उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे

नानक से जय जय प्रसाद तर प्रसुख बस सुत प्रात मीत बनता संघ हसय जय प्रसाद पीमे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कामला जय प्रसाद पोगे सब रसा सगल सामग्री संग साथ बसा दीने हस पाव करने तरसना तुझे त्याग वर संग

अनंत सब सार मुगद अजान सदा सदाए भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्या कौटि संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो शरणा सो असर कर मान जो हवन सो दूर परान छोड़ दै तिसका श्रम करै संग साहि तिस पर हरै चंदन लेपो तारै धोए गर्त प्रित बसम संग होए अंध कुम पत बिकराल नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल

बृहस्पति दास वस्तु लै पाछे पावे एक बस कान बै खोड़ गवावे एक पीना दे दास पी हरले तो मूड़ा कहो कह करे जिसटा करसो नाही चारा तंको कीजा साधन नमस्कारा जां के मन लागा पर मिठा सर्व सुखता हो मन उठा जिस दिन अपना हुक्म

माया मिथ्या राजो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्वस्त्रा मिथ्या रंग संगमया पेखा हस्ता मिथ्या त्रो मोहाभिमान मिथ्या पशु प्रकर दुगमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जब जीव हर के चरण मिथ्या स्वरूप पर निंदा सुनया मिथ्या पर दर्प को रया मिथ्या नेत्र पे खल पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद मिथ्या चरण पर

कहत जय प्रसाद तर सगल सिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रभ ठाक जय प्रसाद तुझ को न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभुचे जय प्रताप पाए दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे जय प्रसाद आपो कन पैरी जय मन तिस्मरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस्को कब न बिसारी जय प्रसाद बाग मिलक तना

नानक तेरी रखाए जे प्रसाद करे पुन बहुदान मने हड़ पर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तो चार बिहारी प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद सुंदर रूप सो प्रसिमर सुदानूप जे प्रसाद त्रिनी की

जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुसा जय बसना, जय प्रसाद हजकर तलै, जय प्रसाद संपूर्ण फलै, जय प्रसाद परमगत पावै, जय प्रसाद सुसाय समावै, उषा प्रभु त्यागा बरकत लागो, गुरप्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तो प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूलना मनो विसार, जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर्त तांको जाप, जय प्रसाद

वनस्पति सारिका संग मुख जल होत सा संग मल सगलिख होत साग संग मिटया अभिमान साग संग प्रगटा सो ज्ञान साग संग बुद्ध प्रवनेरा सा संग सबोतन मेरा साग संग पाय नाम रतन साग संग एक उपर जतन साग के महमा वर्ण कौन पराने नानक साग शोभा प्रमाय सुमाने साग संग गोचर मिलाय साग संग सदा पर फुलाय साग संग आवे बस पंचा सा संग मृत रस पुंचा सा संग वे सब की रेन साग संग मनोहर बहन साध का संग न कतु ताव सा संग सच मन पाव साग संग माया चे भिन्न ना सा संग नानक प्रभु सो परसन्न सा

समुदर से ब्रह्म ज्ञानी के रस अमृत बरसे ब्रह्म ज्ञानी बंधन तय मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानी ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी कुपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबेशम आहा ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के हो सो

हरे ब्रह्मज्ञाने सदा सदजागत ब्रह्मज्ञानी ओबंते आगत ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्म

दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माँ है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे ना जाय दाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर है

तावे नानक से भगवती भगवंत को पावे सुपंड जमन प्रभु दे राम नाम तुम्हें सुध राम नाम सार रस पीवे उस पंड के उपदेश

तरह नानत सुमले जो सुलिख्या तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास हो तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तस्नद्रि आया दास संतन पाए तन पाया सदा निक निक टर जान सोदा दरगा परवान अपने दा को आप कृपा करे।

कई कोट हो पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन पर मैं उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिस्रो होते।

कई कोट पे अभिमाने कई कोट अंध अज्ञाने कई कोट कृपन कठोर कई कोट आप आत्म ने कोर कई कोट पर दर्प को हिरे कई कोट पर दुख न कराए

ताकांतना जाने को आपना ने प्रसो कई कोट पार ब्रह्म के दात नातम पर घास कई कोर तत्के बेते सदा निहर को नेत्रे कई कोर नाम रस पीवे अमर पै सद सद ही जीव है कई कोर नाम गुण गावे आत्म रस सह समा

कबो है पंडर करे बख्यान कब मंथारी लाभ त्यान कब तर तीर्थ स्नान कब से साधम ज्ञान कब केतस पतंग हो दियान जोन परमे परमीया नाना

बृहस्पति संख्या दुखनार्धा कटाय संख्या दुखन जमते नहीं छुटाय संख्या दुखन सुख सबदाय संख्या दुखन नरक में पाए संख्या दुखन मत हो मलिन संख्या दुखन सोबतहीन संख्या तो रख न कोय संख्या दुखन तान प्रष्ट हो संत कृपाल कृपा दे कर नान संग निंदक भी तराय संत का दुखन तय मुख पावे संतन के दुखन कागज लवे संतन के

मोख सनका दुखे सदा पवित सनका दुखी किसे का नहीं मित संगा दुखी को डन लागे संग दुखी को सब त्याग संग दुखी महंकारी संग दुखी सदा भिकारी संग दुखी जन्म मराय संग दुख न सुख ते डराय संग दुखी को ना इठाओ नान सुन पावे तले मिलाय संग दुखी अलबीत टूट संग दुखी काज न पहुचे संग दुखी को ध्यान परमाई है संग दुखी उजड़ पाई है संग दुखी अंतर तिथ होता ज्यो सा बिना मेरे तक कील होता संग दुखी के जड़ किस नाये अपन भी जप ही खाए संग दुखी को अपना रखन हार नान संत पवित्र ले उबार संग दुखी में बिलड़ाए ज्यो जल बहन मछली तड़फड़ाए संग दुखी भूखा निराधे ज्यो पावे के दने त्रापे संग दुखी छुटे अकेला ज्यो वाट खेत माए दो हिला संग दुखी तरम तेरा संग दुखी सामिथ्या कहत किरत निंद का तुरी पया नान ज्योत पावे सोई थिया संग दुखी बिगड़ रूप हो जाए संग दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइय संग दुखी ना मरे ना जीवाइय संग दुखी की पूजन आशा संग दुखी उड़ चलाए निराशा संत का दुख ना तुष्टा कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मेटा कोई नान जाने सच्चा सोए साब काट तिसके हो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस करो दिन रात से जाओ सा गिरास

अनेको प्रजन के असत क्रिकेट यजम के भाषा पार ब्रह्म के जिसमन भूख नानक सन लागे दुख जिसको जिन प्रभ जाता जिसको हर प्रभ अंच त्यावे सो संसहला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेव को किस डरे जैसा सा तैसा दिशा अपने कारण में आप समाया सोद सोद सोद सी दिया गुरु प्रसाद सब हो जाए जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोइया सथूल नय कथ जन्मे नय कथ मरे अपन चलता भी करे अपन जाम दृष्टन दृष्टा क्या करी तारी साहब।

दूसरों न होग। जाप जन सदा सदा दिन रहने सब तो निर्मल करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानी सोचन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रति दुनिया बहर प्रवचित भगत भगत सुनिया तैलो जाके हृदय को होय सतकर्णी सचा की रह सच हृदय सत मुख कहत साचे दे साचा आकार सचवर दे साचा पसार पार रंजन सागर जाता नानी।

नाम त्या में सतगुण में जाको परमाय जन्म रे प्रिया वे जाए ऊज नित इसके स्थान जैसा जना वे तैसा नानी ध्यान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे कराय के रंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभ न सिय कंकार नाना चल करे किन माए पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपने

पवन नाम का समुद्र सुन सारवन कर कर बाज से अपने नाम लाए नानी चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सजा का सत्य स्थान पुरुष केवल प्रधान करतूत सत सजा के बाणे सत पुरुष मैं सुमण सतकर्म जाके रचना सत मूल सत सत युत पत सत करने निर्मल निर्मले जिसह जाय तिसे सब बले सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बदन सत उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सत निर्द बुज को नाम देवता की गत हो आप सत किया सब सत आप जाने अपनी मित गत जिसकी सिर्थ करने हर अवर्ण बुझ करत विचार करते कि मित्र जाने किया नान जो तुझ पावे सोवर थिया विस्मन विस्म पैर समाज बुझ सा स्वा प्रभु के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लय है ओए दाते उदू काटन हार जाके संग तेरा संसार दिन का सिर सोवड़ पागे जन का संग

आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी सब सत सब प्रभगता सुरत सत सत जा सुनता भोजन हर को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सर्वदय जन मान्या करण क्या त्रिमोर बछान्या जा कर विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तत् मन प्रगटाया पै तिन निरपो हे बसाना जिस त्यो जित समाय सुमाना बस माय ले बस कटाए तां गोबिंद न कहना जाए बुझे बुझ नार बब एक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर का सेवक है मन पर

साफ साफ सुमारे अपने दिन का पर्दा टाक के अपने सेव के सर पर रखा है। अपने दाखो देव ढाई अपने सेव को नाम दिपाई अपने सेव की आपत रखे ताकि अपने को न लाख प्रगत सेव को न पहुंचे प्रगत सेव को उचे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नाने सो सेवा दाद बताया निकी गिरी में कद राखे बसम करे लस कुर को टलाखे जिसका साधन करता को राख देख रहा था मान जतन करते वो बात के

तिस कै संग सिख उधर नानक हर गुण गावस्पति सतगुर सिख करै प्रतै पाल सेवक गुर सदा दयाल सिख गुर दुरमत मल हिराय गुर वचनी हर नाम उचराय सतगुर सिख बंधन काटे गुरु का सिख विकार ते अटे सतगुर सिखो नाम तंदे गुरु का सिख उठभागी है सतगुर सिख आहल पल सुवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे गुरु के ग्रह सेव जो रह गुरु किया कै मन मै सह आप गो कर कथ न जनावे हर

एक आस राखो मन मा हे सर्व रोग नानक मिट जा हे जिस तन को चार को नुटता वह सोतन अर सेवा ते पाप है जिस सुख को नित बाच है मीत सुख साधु संग परित जिस बाको करा भले करनी सा सोभा पधर के सरणी अनको बावे रोग न जाए रोग बटे हरे खुद लाए सरण दान मेरे नाम दान जप नानक दरगाह परवान मन पर दौर के ना इंद दुस्ताव से आवे ठाए तंको बिघन लागे कोय जाके हृदय बसियर सोए कलता ते ठंडा हरना सिमर सिमर सदा सुख पाव पवन से पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म बरगास तित कर दाय बसे अविनाशी को नानक कटि जम फासी तत विचार कह जन साचा जन मरे चोका चोका चा

सुखोय सेवक मन सपूरी पे सदगुरते निर्मल मत ले जन को प्रभ हो दयाल सेवक न सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया एचपने सरदा सपूरी राव रहा सत्संग जुरी जिसका साथ लिया मिलाए नाने भक्ति नाम सुमाए शोक मिश्र दे काल न बने शोक मिश्र दे किया दान शोक मिश्र दिन सब कर दिया शोक मिश्र दे जीवन दिया शोक मिश्र दे अगर में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाख है शोक मिश्र दे बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा गंड गुरपुर आया तत् यह बुझाया प्रपन नान जन त्याया साजन सुन करो ये काम अंत्याग जपो नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव जपो नाम जपाव भगत भाई तरिया सुन

जमनेर गम प्रसाद सब आये तब सब सकते कहो कि टाए जब आप अपने जोता रहे तब कवन निडर कवन कत डराए आपन चल तब करने हार नानी ठाकुर गम या पार अपना शिशु के अपन आसन त जनमन कहो कहा बिना सुन।

रूपी जो संघ समावे ते किस का मंत्र बतावे कर्ण करावन करने हार नान करते करना ही सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माई बा मित्र सुत भाई जय

कौन कथा कौन सुनने आ रहा भव व्यंत होते होता नानक आपको आपे पहुंचा दया प्रत्य प्रपंच कार होता गुण में किन विस्तार पाप अंता पे काल को नर को सुर बंचाव ताल दाल माया जंजाल हम मो परम पे पार दुख सो मान अभिमान के प्रकार के व्याख्यान अपन के लाभ कर दे कह खेल संकोच तो नानक के कह दे भगत भगत दे पसरा पसार संत प्रताप दो पा का पैतनी उनके शोभा अनुबदिया उन्हों बनी आपे कद करे अनंत चोद आपे रस भोजन निर्दोष पावित से अपन नाय लावे।

मात पूरी अमृता के दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जा के अनुप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा शिव परवान त्रिजामे पुरख प्रधान जैस मन बस

संजना हृदय सावता रम संत जना सुनो सब वचन सर्व्यापे राम संग रचन जिन जाता जिसके रहत सात वचन साधु सब कहत जो जो हो सोय सुकुमान कर्ण कराम हार प्रभु जान अंतर बस बाहर पियो हे नानक दर्शन देव सम्मोही

ओतनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब

शांत हृद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वथा सिद्ध विद्या तब जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल पर घास सब के मैं सकल ते उदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ये फल ते जन कह मुख पन है गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निदान जप है मन कोय सब जग में ता की गतो ये गुण गोविंद नाम तन बाणी सिमर सातर वेद बखाणी सगल मतांत केवल नाम गोविंद पद के मन विश्राम कोट अपराध स्वास मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाक मस्तक करम प्रभु पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने

अंत ना अंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथ नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथ घाट तघड़िए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे, जेको कह पिछ पछताए, तिथ

जत पहारा धीरज सुनियार अहर मत वेद अथियार पाओ खला अगंध बताओ भांडा पाओ अमृत ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल।

है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अवर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, अरफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसरीक है, निर्लम है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अगर्म है, अपर्म है, अजीत है, अभीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वाने समस्त निदाने, नमो देव देवे अपेखी अभेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथेन्द्र संगी परमाते, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो भान भाने, नमो बाद बादे, अलंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभुंगी प्रमाते समस्ती विभूते कलंक मनाने कलंगी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र पाने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगे स्वंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर गर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देव सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाहंग, नमो पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग सेनाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा भृतकर्ता अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता, परंग परंग परमेश्वर प्रोष प्रोष पालंग, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग, अशेदीय भेदिया नामंग अगामंग, समस्त बराजी समस्त तामंग, तेरा जो रजा चरी छंद। जले है, थले है, पीत है, पे है, प्रभु है, अजू है, अदेश है, अपेश है, भुजंग प्रयात छंद। अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वाने समस्ति निदाने, नमास्तवंग नरनाथे, नमास्तवंग परमाते, नमास्तवंग अगंजे, नमास्तवंग अपंजे, नमास्तवंग अकाले, नमास्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सर्वरोक सोखे, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृश्यंग, नमो सर्वकृत्संग, नमो सर्वरंगे तरभंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिज्जे अभिज्जे समस्तंग प्रसिज्जे, कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी, चरपट शांत त्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अला कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग प्राणंग सर्वंग प्राणंग सर्वं तरानंग सर्वं भुगता सर्वंग जुगता

चकर बकर फिर चतर जग मानी पुरतीन लोग चौदह के बिखे जग जा पिंजे जाप आ देवनाद मूर्ता प्यो सबजे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरखा पार सर्विश्व रचियो स्वयं भव गर्ण भंजन हार कालहीन कला संयुक्ता गाल पुरखा देश धर्म धाम सु भरम रहता भूत अलख अभेश अंगरागना रंग जाके जात बादन नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुगदाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वजनाद रूपासूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वंता सर्वतेन पेख सर्व शास्त्र ना जाने जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नेत

अकर्ता कृत है, अकर्ता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकर्ता अकृत है, अमृता मृत है, अजवा कृत है, अमृता आमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पवपंजन है, अर्गंजन है, विलपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग प्रियात छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संसा, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे।

वासी अजायब भूतेक अजायब गनीमे हरियं गरियं गरी मिल रही में चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तवा प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं शराबक शुद्ध समूह सिधान के देख प्रयोग कर योग जती के सूर सुरार्दन सुसुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रती बिन एक रत्ती के मते माते मतंग जरे जरसंग अनुपतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात इनवारे भारी पुजान के भूप प्रेबित न्याप शीसना जात बिचारे एते पाए तो कहा पाए भूपतंत काओ नांगे ही पाए पधारे जीत प्रय सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ जान के सुंदर हिंस ही हराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत गौन गरह नही जात बिचारे श्री बस श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान द्यादम दान सुसंजम नेम नेक बसेखा है वेद बरान गदेव ग्रान जमीन जमान समान के पेखा है पावन आहार जति जत तार से विश्वचार हजार के देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक अरती बिन एक ना लेखा है शुद्ध सबाद वृंद बास सासना दुर्जान दलांगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंखा लेना हलांगे तुर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलांगे श्री बस श्री भगवान के बाबन त्याग जहान निदान चलांगे वीर अपार बड़े बरियार अबचारे सार की धार पशैया तोड़ दे मिले नरमासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़ नहार सुबातन चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक ने एक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत भविख भवान जपाएंगे जीव जिते जालमय थालमय पालही पालमय सब थाप तपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जातन पापन गे बुंज खपाएंगे सात समूह प्रसन्न फिर जग सतर सभय अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नाथ जान त्रिलोक राज कराएंगे कोट स्नान गजातक दान अनेक स्वंबर साज भरएंगे ब्रह्मेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसेजम फास भरएंगे जे न श्रीपद के प्रास हैं पग ते नर फेर न देह तरांगे कह पयो जो लो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो भक्त्यान लगायो नाथ मिलिये सास समंद्रन लो गयो पर लोग गवायो बास क्यो भिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज कहाओ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तनी ही प्रपायो काहुला पाहन पूज तरो सिर काहुला लिंगर लटकायो काहू लख रवाची दिशा में काहू पशाह को शीस नवायो कऊ बुतान काओ पूजित है पास कऊ मृतान काओ पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सभी जग श्री भगवान को वेद न पायो कऊ कऊ बुतान काओ पूजित है पास कऊ मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभ्यो बाज बेनती चौपाई अमरी करो हाथ दैर छा पूर्ण हे चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा बना जान करो ब्रतवारा अमरे दुष्ट सब तुम गावो आप हाथ दै मोहे बचावो।

कैठा सगरी सृष्टि खाय अचंबव्या जुगा स्वरूप सियम भव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणघाता जे आस तुजता बरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन भग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो कल कवि कबार त्या है ताके काल निकट लह ऐह रचा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाहे ने हर हव ताके ताप तनक मैं हर हव रिद सिद्ध कर्मो सब हो ही दुष्ट छबाए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वास्ते ताहे उबारा जिन नार

तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सीमृत शास्त्र वेद सवै बहुभेद गहे हम एक ना जान्यो। श्री स्पान कृपा।

नाम जन के मन वस्या बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा है। साचा नाम मेरा आधारू साज नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुखमन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत वास

आवश्यकता काम नित सब पूछिए वह कर विचार अंधी रेत ज्ञान भूणी पाए परे मुर्दा ज्ञानी नचे बजे वावे रूप करे सिगार ऊचे पुके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे।

0: नानक मेरे शरीर का एक रात कृतवा हो जुग जुग फिर उठाई है ज्ञानी पूजेता है सचुरा संतोख का धर्म ग्रंथवा हो रजते का जोर गिरतवा हो द्वापर तक पैका सत गिरतवा हो काल युग रथ गण का कूड़ा गिरतवा हो महला
1: पहला कहीं सितंबर स्वामी सच में आज है साच रहे सबको सच समावे।

0: ऐसी इस्तिवाए क्या आती है जर्दे कुछ दे जाए महला पहला।
1: पर पुस्तक संध्या वादन सिल पूछ बगल स्वाधन मुख झूठ बबुकण सारंग त्रैपाल तिहाल बिचारंग गल माला दिल गिलटंग लीला टंग दोई तो दोई धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट ने सो कर्मं।

वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह दियो सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहां साहबजादिया चालिया मुक्तियां हठिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे सिदक के सां सवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा मान नीवा मत उची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाणा साहिब समूह गुरु धामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो निमाणियां दे माम नितानियां दे ताम नियोटियां दी ओड़ आसरियां दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी आप जी ने कृपा रहमत कीती है अमृत वेले तो सोने तख्तां दे प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हन आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है अमृत वेले तो आप दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे जाप पंज बाणियां दे नेत्रे मासा जी दी वार दे कीर्तन होए उपरंत आप जिया वालों बख्श मुख वाग दी कथा विचार गुरमत विचारा छे पौड़ियां आनंद साहब दा जाप होया है कृपा करनी जी समुचियां सेवावां निभाउंदिआं होइआं भुल चुक दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईआं संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दीआं दर हाजरीआं तिल फुल भेटावां प्रवान करनीआं दरों घरों नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी आप जीआं दे भाणे विच रहण सुखां नाल बतीत होई आया दिन आप दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमरन करदिआं बतीत होवे अरदास बेनती है संगतां वल्लों दर कर दे सेवादार भाई जगतार सिंह सच्चे पातशाह जी
ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਸਮੂਹ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਵੀਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਮਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਜੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਜ ਪਵਿੱਤਰਾਵਨ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਉ ਛਕੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਬਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲੇ ਆਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ

अंचललाई तराया पाई पाव जल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया पाई की तोन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार।

0: असंख जाप असंख पाओ
1: असंख पूजा असंख तप ताओ
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ
1: असंख जोग मन रे अवदास
0: असंख भगत।

0: मंगे अलेखे
1: जंग प्रयाद संद
0: में समस्त अल्पनासे
1: अकंजना नामे समस्त नवासे
0: कामंग विभूते समस्त स्वरूपे
1: कामंग प्रणासी सतामंग विभूते
0: सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी
1: जाय प्रभुते
2: गजाय अकनिंदा समस्त निवासी

ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कभ्यो बाहठ बेनती चौपही। हरि करो हाथ रचा पूर्ण होए चित।

0: नमस्कार
1: तसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी कट कट के अंतर की जान पले बड़े की पीर पछाण संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए सारन के सुखी
0: एक एक की जाने
1: जब बहुत कटक करा कर तारा प्रजा तत् तब दे अपारा
0: जब
1: जीते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे
0: तुम सब ही ते रहते आलम
1: निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद सांब
0: ताका मूल उचार पेदा जाको पेद न पावत पेदा
1: ताको कृपान अनुमानत महामूल कछ पेद न जानत
0: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्ह
1: आप अपनी बुद्ध है जीती बनत पिन पिन तो
0: तुम्हारा लखा जाय संसारा
1: एक रूप अनूप रंग पे और राव के राजा है बैठा
0: श्रेष्ठ दिखाए
1: मेरी तुम करो सिखियो बार सिख संगरो
0: दुष्ट
1: सन्नी परे तिनके दुष्ट दुख मरे
0: परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे
1: कल को एक बार त्या है ताकि कार निकल आए है
0: अच्छा होए ताह सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला
1: कृपा दृष्टि न्याय ने हर हो तन के ता तन कुमार हर हो
0: देद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शान स्वय सके न कोई
1: एक बार जिन तुम ऐसे बार और काल पास ते ताय बारा
0: जिन नाम त्यारो का दर दुष्ट दुख तेरा
1: खड़ खेत में सन तिहारी आप हाथ लियो बारी
0: सर्व ठोर मोहो साई उस दोख ते ले बचाई
1: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सबराता
0: खेल बिक सकल दे को हरता दुष्टों खेल को बचा करता
1: श्रीयस्त जो पे जाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला
0: मन

संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेन रहाओ ओ चौथा नसुहावना ऊपर महल मुरार सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार सच करनी ते पाई है दर कर महल प्यार त्रिविध कर्म कमाई है आसान देसा होए क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिलिया सुख होए निज कर महल पछाणी है नदर करे मल तोए बिन गुर महल न उतरे बिन हार क्यों घरवास एको शब्द विचारिए अवरते आगे आस नानक देख दिखाइए हाओ सद बलिहारे जास श्री राग महला पहला त्रिग जीवन दोहा गणी मुठी दूजे पाए कलर केरी कंध ज्यो एहनस किर ठर पाए बिन शब्द सुख ना थिए फिर बिन दुख न जाए मुंदे फिर बिन क्या शिगार दर का टोई नाल है दरगा झूठ खुआर रहाओ आप सुजान न भुलई सच्चा वडकिरसान पहला धरती साध के सच नाम दे दान नौ निधि उपजै नाम एक करम पवै निशान गुर को जान न जानी क्या ते चज आचार अंधले नाम विसारिया मन मुख अंध गुवार आवन जान न चुकई मर जन्मे होई खुआर चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संधूर चुआ चंदन बहुकना पाना नाल कपूर जे तन कंत न पावई ता सब अडंबर कूड़ सब रस भोगन बाद हैं सब शिगार विकार जब

और ऐ ना सखाबिर देखे प्रीतमा मैं नीर वह वह चलया जियो सतगुर मित्र मेरा बाल सकाई हों रह ना सखाबिर देखे मेरी माई हर जियो कृपा करहो गुर मेलो जन नानक हर तन पल्लै जियो माज महला चौथा मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हो हर बिन दूजा अवर न जाना कोई सज्जन संत मिले वड भागी मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो हो मन तन खोजी भाल भलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसै जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करो प्रद पाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जाल मिल कमल विगसै जियो मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै मेरे मन दिन वेदन गुर बिरह लगावै हर हर दया करो गुर मिलो जन नानक हर मिल रहस्य जियो माज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण सुनी हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मेरे सतसंगत हर गुण गाए जग भव जल दुत्तर तरिया जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं देह सनेहा मेरा मित्र सखा सो

कर लेना चाहो महला पहला। अगे पहला कपड़ होवे खाना होवे वाओ, सुरे गहदिया मोहड़िया स्त्रियां हो वन नानक सबो वाओ। पी तू है साला हना आखर लहना चाहो पबड़ी। बद फैली गैबाना खसम न जाने, सो कहिए देवाना आपना पछाने। कल बुरी संसार वा देख पिए, विणना में बेकार पर मैं पचिए। रात होवे एक जाने, सोई सज से कुफर को कुफरान पाया। दजसी सब दुनिया सुभान, सच समाई है सजे दर दीवान आप गवाई है। महला पहला श्लोक। सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवरना जीवे कोए। जे जीवे पत लत्थी जाए, सब हराम जे तक शिकाए।

मया गांड ने किसत हो एक गांड वर्ते संसार इत गांड वर्ते संसार मूर्ख गंड पवे मोहे मार नानक आखे एहो विचार सुपती गंड पवे दरबार पवड़ी आपे कुदरत साज गया।

न छत्ते ही अमृत पाए, एक मटिया में मटिया खाए, एक पौन समार, एक निरंकारी नाम आधार, जीव दाता मरे न कोय, नानक मठे जाहे नाही मन सोए पवड़ी, पूरे गुर की कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजे कर लग जन्म गवाई है, वृंदावे सब वेस पज खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, गुण सतगुर सेवे ना ही सुख निवास, फिर आइए दुनिया को टीरास, कूड़ कमाइए नानक सच करास, लाहे पत सों जाइए, श्लोक महला पहला, तुद भावे ता भाव है गावे, तुद भावे जल नावे, जा तुद भावे ता करे बभूता, संगी नाद बजावे, जा तुद भावे ता पड़क देवा, मुला सेव कहावे,

जो कुछ वरतै सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवै होर, डर डर डरना मन का सोर। रहाओ ना जियो मरे ना डूबै तरै, जन कस किया सो कुछ करै। हुक्मी आवै हुक्म जाए, आगे पाचै हुक्म समाए। हंस हित आसा समान, हते सुज भूख बहुत।

पाप बन बीज की पोट। काम क्रोध जीव में चोट, नाम विसार चले मन कोट। सच गुर की सच सीख, तन मन शीतल साच परीख।

द्रौपदे द्रौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाउ निर्वैर अकाल मूरत अजुन्नी सह भंग और प्रसाद।

न चेतस अंधाता कार पटंबर गली मल लावस सांसा मूल ना जाविस्ता एक सचानी जे चित लावै लाभ लोभ की ताविस्ता जापस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ काया कमली हंस एयाणा मेरी मेरी कारत ब्याहानीता प्रणवत नानक नागी दाजै फिर पाछे पछताणीता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जेकर दृढ़ चित की जेरे जन्म जन्म के पाप कर्म के जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा लीजेरे मन एको साहिब।

कोई जागत रहे साबत वास्तव अपनी लहे रहा सगल सहरी अपने रस माती ग्रह अपने की खबर न जाती मूसन हार पांच बटवारे सोने नगर परे ठग हारे उन तेरा के बाप न माई उन तेरा के मीत न पाई सर्व सियाणप ना हो रहते साध संग तो दोस्त बस रहते कर कृपा मोय सारंग पान संत धूर सर्व निदान साबद पूंजी सतगुर संग नानक जागे पार ब्रह्म के रंग सो जागे जस प्राप कृपाल सो पूंजी साबद धन माल रहो दूजा गौड़ी गुर मल्ला पंजमा जाके वसै खां सुल्तान जाके वसै सगल जहान जाका किया सब कुछ होए तुस्त बाहर कछु न होए कहो बेनती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे दे निभाए रहो सब ते ऊंचा जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्व व्याप्त पूरी धनी जाकी शोभा घट घट बनी जस सिमरत दुख डेरा टहे जस सिमरत जम कछु ना कहे जस सिमरत होत सुके हरे जस सिमरत रूपत पाहन तरे संत सभा को सदा जयकार हर नाम जन प्राण आधार कौ नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुर मल्ला पंजवा संत दर्शन अगर निवारी सतगुर भेट हो मैं मारी सतगुर संग नहीं मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जन सच मैं रात है शीतल सांत गुरत प्रवर जाता राम संत प्रसाद प्यार नाओ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते

रंग दूत तरे साध कै संग सुख बहस संत साजन परवार हर तन खाट्यो जा का नहीं समार जिसे प्राप्त तिस गुर देहे नानक बिरथा कोई न कहे गौड़ी गुआरी मिला पंजम अत पनीत होए तित काल फिर जाए माया जंजाल रसना राम राम गुण नीत सुख पावे मेरे भाई मीत लेख लेखन कागज मसवाणी राम नाम हार अमृत बाणी राम ए कार्य तेरे जाए विकार सिमरत राम नहीं जमार धर्म राय के दूत ना जो है माया मगन ना कछुए मोह है

सनी भाई जो चाहत सोई जा पाया तब ढूंढन कहाँ को जाया अस्तर पे बसे सुखासन गुर प्रसाद नानक सुख बासन।

Que nos va, yo moyo, no moni bala, ote, kate, nahi, rachasua, esa jaga, moe, guren, kayo, ton, sarna, pario, taja, garbasua, marga, bravo, santum, sayo, drini, nanaka, tasa, bagdar, jasua, gauri, mala, banya, tojbin, kamen, mara, मेरे प्रीतम प्राण दरा राहो अंतर की मैं तुम्हें जानी तुम्हें

हरे इहा उहा सर्व सुख दाता सकल कटा प्रत पारे रहाओ महाकाश काटे खन पितर रसना नाम चितारे शीतल शांत सुखर सरणी जलती अग्नि निवारे

सै सन प्रसाद हर जापिए सो जन दुख नाम व्यापिए जाको गुर हर मंत्र दे सो बरे आमाया गंथे नानको प्रमया कर मेरे मन तन वासे नाम हरे गौड़ी महला पंजमा।

कर साध करिया। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बल हरिया रहा। जित सात ग्रास मन लेता ते ते ही गुण गाई है। जो हुए दयाल सदगुरु अपना ताए मत बुद्ध पाई है। मेरे मन नाम लाए जम बंद ते छूटे सर्व सुखा सुख पाई है।

पला नहीं सूझी है। अनक बंधन माया परम परमाया गुण निज नहीं गाया। मन बिखे ही मैं लूजी है जाखो रे कृपा करे जीवत सोई मराय। साध संग माया तरे नानक सो जन धर हर सिजी है। गौड़ी महला पंजमा।

सुख आनंद मंगल रस मान गोविंदा आगे और राहो मान अभिमान दौ समान मस्तक डार गुरु पागे हो संपत हरख नयावत दुखा रंग ठाकुर।

अंतर्गत के साधिका चरणाय संसार पार ब्रह्म आराध्य उदर सपरवार साजन बंद सुमित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए कै पार उपकार करे मार खजाना देव कर हर के चरण धान नानक दास के हर तेरे प्रभु तुनो मंगाए दान माल खजाना थे हो कर हर के चरण निदान ना

जग एक असुर माने अचरज लख्यो न जाई राव काम क्रोध मोह बासु प्राणी हर मूर्त बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रह नाई जो दिसै सो सगल विनाशै ज्यो बादर की छाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहु राम शरणाई गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन

नानक कहत मुखत पंथ यो गुरमुख होय तुम बाबो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमख ना हर गुण गावै राहो दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सिरावै माया मोह मा संकट बन ता स्यो रुचि उपजावै अंतरवार सदा संग प्रभु का ता स्यो नेहु न लावै अंतरवार सदा संग प्रभु ता स्यो नेहु न लावै नानक मुख ताए तुम मानो जय कट राम